जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

जिंदगी तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह पेश किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार अबीन। चले अगला भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आप सुनते ही रहना सोनू निगम की आवाज में।

निगम सोनू निगम की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ सुनने वालों, दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। चले प्रोग्राम में एक संतोषी माँ का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में ये भजन की ओर हम आपको

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। बहुत सी सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, भजन यात्रा प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक भजन पेश किया जा रहा है, अति सुंदर भजन है, सोनू निगम की आवाज में, जरूर आप सुनते ही।

सोनू निगम की आवाज में अभी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास भजन जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दुनिया के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में भी इंटरनेट रेडियो के जरिए हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

और अति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा चालीसा की ओर। श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: यात्रा प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई आज शुक्रवार का दिन। आप सभी सुनने वालों को रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरिया गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। पुरानी नगमे पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चलते हैं प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर। आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में फिल्म सूरज और चंदा, उसी फिल्म का ये गाना।

आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते फिल्म का नाम था सूरज और चंदा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो वेस्ट।

उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए फिल्म मॉडर्न इंडिया की ओर हम आपको ले चलते हैं। अगली बार शमशाद बेगम की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म मॉडर इंडिया का गीत पेश की गई शमशाद बेगम के आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं। यसुदास एंड प्रीति सागर प्रोग्राम में।

Film Anand Ashram उसी फिल्म का गाना पेश की गई यशुदास और प्रीति सागर की आवाज में। ये खूबसूरत प्यार भरी गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, नतीजा हमारी मोहब्बत का।

मुखी सौर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बिल्कुल सौर लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था राखी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। इसी टारगेट नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर सभी और सभी इन्फॉर्मेशन इन्फो आप ले सकते हैं। लता मंगेशकर की

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक गाना और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है जवानी।

गाना प्रोग्राम में लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

जिसमें ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म कुर्बानी, उसी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। 1980 का फिल्म है, 1980 का फिल्म।

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म राम बलराम, उसी फिल्म का एक गाना बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आज उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई। अब की बार मोहम्मद रफी और लता

रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है। मोहम्मद रफी और लता के बाद किशोर कुमार एंड लता होगा।

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने खूबसूरत नखमे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम जोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम हम जूलिए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

साथ में श्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया गया है, दिल में क्या है। तो फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले किशोर एंड लता की आवाज में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शहर यूट्रेख्ट हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।
1: सांसों में तेरे

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेशम लगता है लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो भी थे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

0: फिर से तो फरमा।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
3: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
4: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
3: 6th of September, unforgettable 90s.
4: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
5: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार उदित नारायण और अलका जे के निगम सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार उदित नारायण और अलका जे के आवाज में ये गाना भी

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66 एलवीसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा दार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, यह कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।

पास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रेया जी की आवाज में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अपनी बार ये गाना

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी है। फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक हरि हरन। अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है

हरि हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनवल की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.com.au। नीरज और श्रेया जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

इश्क़ गए मेरा इंतजार करना, अरमान मलिक की आवाज में। द फिल्म खुदा हाफिज, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर। गाना कबूल है शुक्रिया, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम।

जरिए उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

कुमार सानू, कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल।

की सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम इश्क है तुमसे, इश्क है तुमसे फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म नाराज, उसी फिल्म का एक गाना

फिल्म का नाम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज क्यों हमसे पर्दा है रेडियो वेस में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकीस के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकेश जी के आवास में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसनों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नख्मे इस वक्त सुनते हैं जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार के आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बात ले चलते हैं फिल्म बारह धड़ी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारह धड़ी। फिल्म का नाम, खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी के आवाज में।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो बेस की जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। अभी आपने सुना, चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश और गीता दत्त की

रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी श्रोताओं वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है ऊंचा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि करमलाल दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है प्यार द रीमेक्स।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दूर सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Dosharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चुन लो मुझको भी साथ अपने, तुम न मानो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, इस सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम uit de film जवाने जाने मन. En uit de film Abhiman komt gezongen door Lata Mangeshkar, Teri Bindiya Re.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशांगदुर अखिल सचदेव एंक्वाम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कौन खुशांगदुर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान, मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग डोर अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपति. हाउ द फेदर मैट जुबेर नौटियाल मैट आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम द प्राचीन फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग लता मंगेशकर एन कॉम्ट आउट द फिल्म वक्त। गाँव द फैदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजाओं दो रेखा भारद्वाज कॉम दोरी टूट गई।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।